तो सात संगत जी हो, ये आप सुनने वाले लोग हैं, कीर्तन करने वाले हैं। कीर्तन एक ऐसी चीज है, प्रभु की कीर्ति करनी, और राग ताल गुरबानी और प्यार, उसके बाद जिंदगी में सिखलाई होनी, ये सब चीजें बड़ी जरूरी हैं। और सबसे ऊपर है इंसान का जो प्यार है, प्रेम है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, मैंने अपने सारे शरीर पे प्रभु का

कर आपे छोड़ बिछोड़ा हर पिन को दूजा हो दूजा हर दू हर दिन को दूजा हर दिन को दूजा को ना हर दिन को दूजा।

नहीं माए सो ब्रह्म बताए गुर मन ही माए मेरे चित न चले मन पयो पंग मेरे चित न चले मन पयो पंग मेरे चित न चले।

एके दे एके बाण खाक बाद आतस ओ आब कोर लाओ है अल्ले अपेख सोई पुरान ओ कुराने ओई एक

राग गौड़ी पूर्वी विच ऋषभ धैवत कोमल दोवे मध्यम ते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस राग की जाति संपूर्ण वादी ऋषभ संवादी पंचम अते समा शाम दा पहला पैर है। इस राग विच कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रिंसिपल शमशेर सिंह क्रीर।

बहुत प्रसिद्ध सरल पर गंभीर प्रकृति का राग है। यह राग लोक संगीत का इना अनिखड़वा अंग बन चुका है कि अनेक लोक गीतों विच इस दियां सुरां गूंजदियां सुनिंदियां हन। टोडी बारे प्रसिद्ध है कि यह गा के गवैया राज दरबारां विच बख्शां दियां झोड़ियां भर लैंदा सी। गुरबाणी विचों इको दे सलाहुण दा मजमून लिया है ताकि जीवड़ा दुनियावी दरां ते ना भटकदा फिरे। कोई एक ही किस्म दियां टोडियां सुनिंदियां हन जिन्हां ने भी मनुखां दे दर जां लड़ पकड़े वह दुखी पर जिन्हां प्रभु दा पल्ला पकड़िया ओह बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच

मन तन तेरा, तन भी तेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा, जियो पिंड सब रास तुम्हारी तेरा।

समाप्ति है सत्संग, पर मेरा चित करता है कि ए सत्रां ते तुहानूं समझ आ गई, ज़हन विच बैठ गई हां, तुसी कृपा करके हौली हौली इस दे नाल

चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख भंज। चीत आवे ता श्रद्धा पूरी, चीत आवे ता कबू न झूरी। अंतर राम राय प्रगटे आए, गुरपुरे दियो रंग लाए। चीत आवे ता सर्ब को राजा, चीत आवे ता पूरे काजा। चीत आवे ता रंग गुलाल, चीत आवे ता सदा निहाल। चीत आवे ता सदन भरंता, चीत आवे ता सब रंग माणे। चीत आवे ता चूकी काणे, चीत आवे ता सहज घर पाया। चीत आवे ता सुन समाया, चीत आवे ता सुन समाया। चीत आवे सद कीर्तन करता,

कैसे फिटे गुरु बाबे फिट कैसे फिटे गुर अंगद कीते कूड़े गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हठ के ना विचारे गुर चौथी

निंदक दुष्ट सब तार तारिया जहान, निंदक दुष्ट सब तारे तारिया जहान, लहया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी तुदनू धन कहया, जिन्नी

हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह। हम क्यों कर जपे आणिया हर तुम वड अगम अगा।

हमारी जेबा एक प्रभ जेबा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाहे जेबा एक कवन गुण कही है तेरे गुण बहुते मैं एक न जाने कवन गुण कही है जेबा एक तू समरथ बड़ा मेरी मत थोरी राम मेरी मत थोरी राम हम अज्ञान अल्प मत थोरी मत थोरी तू समरथ बड़ा बड़ी हूं।

निर्मल निर्मल सूचा, निर्मल निर्मल सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, अंत न अंता सदा बेअंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा, ऊंचो ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचो जानी जे प्रभ तेरो थान, ऊंचे ते ऊंचो जानी जे प्रभ तेरो थान, तेरो थान, तेरा थान सुहावा रूप सुहावा, तेरे भक्त सोहे दरबारे, तेरा थान सुहावा, तेरा थान सुहावा, तरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया, तेरा थान सुहावा, हर जपे हर मंदिर साजिया, हर मंदिर साजिया, संत भगत गुण गावे राम, हर मंदिर साजिया, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते, हमें अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को

जन नानक को हर बख्श रे हो, जन नानक को हर बख्श रे हो। हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जपे आनिया हर तुम वद अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पाह, सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संगत रहा। जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुठे मेल मिला हर कृपा कर।

श्वास अमोलक तेरा इन हाथ न आवे लकी 24,000 श्वास बंदे दा अमदन मूल थी वे अमदन मूल थी वे ओ जिस बंदे नू इतना गादा ओ

हर हर नाम गोविंद, जप मन हर हर नाम गोविंद, बड़ पागी गुर सतगुर पाया गुण गावत परमानंद, जप मन सतनाम सत सतनाम।

जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उज्जल होइए, जय त्याई हर पुरख निरंजना, जय हर सिमरन भया, तै अपार जगत कीनी, बड़ पागी हर जपना, बड़ पागी हर जपना। आखिरी पंक्ति है,

वर्जें लोग राजा तासों तूती क्यों बने जाके जी बनाओ सलल निवास जैसे मीर की ना कटे रुच सलल